युवाशक्ति मोबाइल सेन्टरबाट सामान खरिद गर्नुहोस् र बम्पर उपहार जित्नुहोस्। युवाशक्ति मोबाइल सेन्टर वीरेन्द्र नगर लाटिकोली लाइन मंगलडी चौकदेखि 150 मिटर तलतिर बाटोको पूर्वपट्टि। मोबाइल नम्बर 9860734।

0: मुझो जलायो लोभी तो न जाने मुझो जलायो लोभी तो न जाने मुझो जलायो लोभी तो न जाने मुझो जलायो लोभी तो न जाने मुझो जलायो
1: मन लोभी

मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो

जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो लोभी को नजरे ने मुझो जलायो

पीआरबीटी पुरुष आवाज में 01600033852 पीआरबीटी 6054066666 सीआरबीटी महिला आवाज में 01600033853 पीआरबीटी 6054066666 सुझाव तथा प्रतिक्रिया का संपर्क 98470 4707 उत्पादक तथा वितरक बिंदुदासिनी म्यूजिक प्राली काठमांडू।